नहीं बे बस पाओगी। यहाँ निकल कर अपनी जात उलझा न देना, सुनो तुम सिर्फ अपने काम से काम रखना। हाँ पढ़ने को निकली हो तो पढ़ाई तुम्हारी मंजिल है, यूं ढांप लो खुद को कि गंदी नजरों से बच जाओ। तुम्हें अपनाने को दोस्ती बढ़ाने को कई हाथ बढ़ेंगे, तुम धीरे से अपना रास्ता ही बदल लो। मर्द तुम्हें खुद से हमेशा नीचा रखता है, तुम यूं ही उस पर बहस न करो। उसके पास बड़ाई के लिए क्या है, शायद कि ताकत में तुमसे बड़ा हो। लेकिन अगर एक लड़की के लिए, एक बहन एक बेटी के लिए उसकी नजरें पाकीजा नहीं है, खुद पे जब्त नफ्स नहीं है, दिल में तेरा एहतराम नहीं है, तो वो तुमसे हरगिज बड़ा नहीं है। वो यकीनन बहुत छोटा है। वो बड़ा होता है जब वो एक लड़की एक बहन एक बेटी की इज्जत का मुहाफिज होता है। आज ऐसी पाकीजा नजरों का मुहाफिज नहीं मिलता। शायद इस लड़की ने खुद को बेपर्दा कर दिया है, लेकिन ये तो चंद बापर्दा की भी इज्जत नहीं करते। शायद वो हुस्न को खुला देखना चाहते हैं। नहीं, हरगिज नहीं। अभी लड़कियां इतनी अरजा नहीं हुई, अभी इन्हें माँ बाप की इज्जतों का पास है। वो हर एक के लिए सजी संवरी नहीं फिरती, वो किसी गैर से छुपी दोस्ती नहीं रखती, वो छुप के माँ बाप से किसी अनजाने पे एतबार नहीं करती, वो किसी गैर से अहदो पैमा नहीं बांधती और खुद को किसी के हवाले नहीं करती। वो अपनी इज्जतों की आप मुहाफिज है। हाँ वही मरियम, वही फातिमा, वही आयशा है। ये पाकीजा है, हयादार है, क्योंकि वो एक मुसलमान लड़की है, क्योंकि वो एक लड़की है। अल्लाह ताला ने अपनी दो चीजें औरतों के लिए पसंद की है, एक अपना हिजाब और दूसरा तखलीक। औरत तखलीक करती है, मां बनती है, और इसी तरह हिजाब में रहना। वल कवायदो, और बैठ रहने वालियां, मिनन निसा, औरतों में से जो बैठ चुकी हो या बैठी हुई औरतें, इससे मुराद हैंडीकैप नहीं है कि उनकी टांगें जवाब दे गई हैं तो अब वो बाहर नहीं जाती और घर बैठ गई हैं या बैठ के नमाज पढ़ना शुरू हो गई हैं। इससे मुराद वो औरतें हैं जो अपनी जवानी की उम्र से गुजर चुकी हैं, जिसमें वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रही, उनके नफसानी ख्वाहिशात और जज्बात खत्म हो गए हैं, उनके अंदर से कशिश खत्म हो गई है, न वो किसी से शादी की ख्वाहिश रखती हैं, न कोई और उनसे शादी की ख्वाहिश रखता है। यानी ना कोई मर्द उनसे शादी करना चाहे, न वो किसी से करना चाहे। यहां पर सिर्फ लफ्ज बूढ़ी काफी नहीं, यहां भी किसी खास उम्र की बात नहीं, क्योंकि इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करता है। अगर आप यहां सिर्फ ये चीज भी रखें कि मेनोपॉज शुरू हो जाए, पीरियड्स खत्म हो जाए, तो आप समझे कि हम उसमें शामिल हो गए। नहीं, बास ख्वातीन के पीरियड्स के खत्म होने का वक्त बहुत अर्ली एज में हो जाए, थर्टीज में हो जाता है, लेकिन उनके अंदर स्टिल कशिश मौजूद होती, औलाद पैदा नहीं कर सकती, लेकिन इसके बावजूद उनकी रगबत मर्दों की तरफ हो सकती है या मर्दों की उनकी तरफ हो सकती है। तो बुनियादी तौर पर जो क्राइटेरिया मुकरर किया जाएगा वो क्या है कि ना उनके अंदर अब शादी की ख्वाहिश है और ना किसी के अंदर उनसे निकाह की ख्वाहिश है, यानी बिल्कुल गई गुजरी, जिनके जज्बात खत्म हो गए। ऐसी औरतों के लिए क्या हुक्म है? अल्लाती ला यरजूना निकाहन, क्योंकि शर्त क्या है? ला यरजूना निकाहन, जो उम्मीद नहीं रखती निकाह की। फलैस अलैहिन्न जुनाहुन, तो नहीं है उन पर कोई गुनाह। अय्यदाना, कि वो रख दें, उतार दें। पीछे भी क्या पड़ा था? उतार कर रख देना, ही न तदाउना, और यहां भी यदाना, रख दें, उतार रखें। सिया बहुन्ना, अपने कपड़े, ही मुराद है पर्दे के कपड़े। सौब कहते हैं

0: Du lytter til Radio Abkirvest på 92,9 MHz og kabelnet 88,9. I det tidsrum træffes vi på telefon 39 29 71 04. Den øvrige tid træffes vi på telefon 22 47 59 41.
1: Avaz, Delgi, Music Ki, Soch Ki, aur Aapki, Aapki Avaz.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फ़ोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफ़ा से फिर सुन लें 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया।
3: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है।
2: हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
4: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
5: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है।
4: अलिफ

तो आप कुछ रात रहे से अपने घर वालों को ले निकलें और खुद उनके पीछे चलें, और आप में से कोई शख्स पीछे मुड़कर न देखे, और जहां आपको हुक्म हो वहां चले जाइए। और हमने लूत की तरफ वही भेजी कि उन लोगों की जड़ सुबह होते होते काट दी जाएगी। और अहले शहर लूत के पास खुश खुश दौड़े आए।

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

0: इस्लाम जिंदा,
1: इस्लाम जिंदा
0: हो गए।
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।